0: म गायक अञ्जुली शर्मा।
1: नमस्कार, म गायक तथा सर्जक एके सापकोटा। रात जाँदै जान्न गीत हजुरलाई कस्तो लाग्छ एकचोटि हेरेर लाइक कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।